सेना बल्ले हारे, सदा सेना बल्ले हारे सचिया, सदा सेना बल्ले हारे

साहबे तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह

दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतू चंडिया साहेब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मिले बलार।

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनिया नेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमात शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सन्नत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन अकाल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण के तेद यो पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिते है। मोन दी मदार कितने असुनी कुमार कितने अंसा अवतार कितने काल बस भय है। पीर यो पिकांबर कितने गाने न परत भूम ही ते हो के फिर भूम ही मिले है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट भेष पोसती अनेक दानी।

भेंट जो घसत शेष बृछन सो माटी को भसैया बोल पूछ लीज जो सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेंट पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करोई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पा भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जोग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान बन हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कैतरत है जैसे एक सौगी कहूँ जो किया बरा के बन का बहु संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोगन भ्रमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल गुंचर ओगत हा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जप कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मारही कहा भयो फांसी डार बुढ़े जड़ गंगदार

सोई राज कर रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही के सेव सब ही को गुरु देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीध सोई पूजाओ निवाज ओई मन सब एक पयन एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

जैसे एक आग ते कनु कगोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केत कछ मछ केत उनको करत भज केत अच वच हो सपच।

भगवान कहूं गार डूबूड कथा कहानी। कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हूं, कहूं वीर विद्या भूतं प्रवाहो, कहूं छल छाला धरे छत्रधारी, कहूं राज

कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व बरीत कई वेद शास्त्र विद्या व्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ

रत भर मत सो वरम गई यगन होत्र गई देव करम गई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म गई सिमृत शास्त्र दुशरत।

कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई के वाज कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई यघन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायतन अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप देश देखे मुरार। बिन मगत सगत नहीं भरत पान बहु करत हो मर जग दान। बिन एक नाम एक मगत सगत नहीं भरत पान बहु करत हो मर।

रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद क्षयं जय जात न पात न मात पितं जे रज्यं छत्रे छत्र चितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वाख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपेंद्र नकेंद्र नगं श्रेय जज गंध।

प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जम पह किन्नर जा छजुवंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जा छभुजंग दिए गज बाजर थालिक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान दुवंग जय अंडज से तज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा काश निवास चितंग रज रोज

लोकन जोग जुगं वो वंजन गंजन आदि सरंजे बंदत देवा देव नरं गण किन्नर जाच्छ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंजे पार न पावत पूर मतं अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद गते अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध दो मुकताप तपै कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धरम सभ तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं गोड वृत्ति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस।

भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिय न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोग दाग दक है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक सेघ भेक है सदीव विश्व वर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जिमी जमान के विक सदीव करम भरम है अदवेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है।

अभूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है।

जच कि नर मछ मारस मुर्ग उर्गा पार नेद नेद पुकार ही शिव सकरो मुखचार सरब सबद बतार के दर्जा पही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र नावे कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठोर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णके विगे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न बद्ध उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा घूर के न अधीन सर्व सपद पतार के दर जानिय जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पढ़त पढ़त थके महा

बरन चहनना चक्र जाको चक्र चहनाकार सर्व ज्ञात सर्व भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्मनाथ दुष्ट हर्ता सृष्टि कर्ता जगत।

दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन।

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब करकूट।

आत्मा स्वरूप है, कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है, कौन सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब कह मरण है, कवन सुरक कह नरक, को सुखड़ा को मूढ़ता, कहाँ तरक अवतरक दोहरा, को निंदा जस है कवन

अभिमर्दन काल सुरंग अष्टायध चमके भूखंड दमके अतिथि झमके भुंग फनंग जय जय हो सीमखासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण दुजा भरंगण फणि फुंकारण जोध जिते।

सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो से मांगा सुर मर्दन भूमा का सल उर्दा थे। दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गुण

सहति सन्नाहन अष्ट प्रभान बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खा सुरमर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मनुज मदंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीमा खा सुरमर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु गमंगण सहस्र झमंगण फणियर भंकार।

सुर नर मुन बंधन दोष निकंदन वृष विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उदारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल दले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटे निवारण धम धारण तेज प्रकरखण धुंध तब दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सदर्पकरण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे गर्क सा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध ऊर्धंग घंट का बिराजे रण झुण बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखो।

चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष और रोधन क्रूर प्रत्यय दुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुन संजग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंदे दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो से मै का सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी।

दुख दोख प्रवचन से वक्र अच्छन संत प्रतक्षण सुत सरे सारंग सन्ना है दोष प्रदा है हरदल गा है दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध।

न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं करम काल सब जीव जंत की गर्द पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख तहता उतार कई कोट इंद्र जय पानहार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवये दीनन की व्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पच्छ पशु नक नाक नरा देव सर्व समय सब को व्रतपार है पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन कौ दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक राज करो कुरुहान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंग देव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री

इन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह बीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह छह है। जान को दे दो जान को दे दो जमीन को दे दो जमान को दे काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्रीपद महापत ल है। रोगंते अर्शोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलावत।

जाच भुजंग सो दानव देव अभेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का सब ताल प्रसाद तल जाच भुजंग सब है सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिग से सब हु मिल गायो वेद गति वन वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितो सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान वेद निर्वाण सब पचहारे भेद न पाय सके उन भेद को खेदत है छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद अनाथ अगाध बेगद वैक जप्योत नहीं कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तपोधन के जरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुखकारे दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के धाम से धारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्य के चलैया महासत्रन के साल हैं दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया कटैया जम जाल हैं युद्ध के जतैया।

भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर भंग से बुद्धेले।

हर कै बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं कह राशि है अनासी कह के मानी है। जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न माए ताकि पूर्ण प्रभा के सुझंडा के अन मानिए। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोह होने को मंत्र है ने जंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है को मद को प्रहार है। दीनन को दत्त है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है।

काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पुगत है के प्रदता के वासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है मार को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पर अवार हूं को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधव पूर्व बिना पार पावे असत अनास है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जय मजाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भजैया है मोहय महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है दरैया द्रम चाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के। हंसनी सि हरु मही रसी हो सन्नाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी बल्लाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरे गोल्ड चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान सी बुलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी गंधारी गोर खरी करते जचारी पवन के आरी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी यंत्र मंत्र दे।

जंपास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत जित।

कह चाओ पई। सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस हुन तीन कह जय। भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे।

नाहि प्रभु धर्म जुद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद बिचारे। देह अनत नानत रह जस नाव चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सदीपक ज्यों जियारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार भारे दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत। स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो यह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छह सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुखदावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुंके चरण तर सत द्रव तीर तरन। श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल।

लक्ष्मी खड़े तुम्हारे दरबारा सब जो नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी।

तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अग्रवास भैगा। जोगी सुन त्यावन जितेन्द्र नाम करता सुकम मूर्त नाम।

0: तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणी पग नान सच्चे नाम बिन क्या टीका क्या तग मन लभै
1: लख नेकियां चंगे आईयां।